सोई तुझे पछाण है, तेरिया भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावे, जिसनों तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है पाना, कहो नानक टह पाया द्वारा, रख ले वो मुगदया जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल ना बुझे अपना सूजे, भरम व्यापी अहमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभ ते होवे ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी, आवरियो पाओ ना को सूजे, नानक तरिये गुरबचनी, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पितर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की, देह का ऐडानो, संग तिहार है कछु ना चल है, ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण, एक पुरख भगवानो, बसंत महला नावा, पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गयो ना जाए, रहाओ जोगी जंगम अरसन आस, सभी पर डारिये फास, जेह जे अर को नाम समार, ते पव सागर उतरे पार, जन नानक हर की शरण आए, दीजे नाम रह गुण गाए, बसंत महला नावा, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छूटो, कर बैठो विश्राम रहाओ, माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान, लोभ मोए परसना साकै, गही भगत भगवान, जन्म जन्म का संसार चूकार, तन नाम जप पाया, तृष्णा सकल विनाशी मन ते, नहीं सुख माए समाया, जा कहो दयाल कृपा निध, सो गोविंद गुण गावे, कहो नानक बिद की संपै, को गुरमुख पावै, बसंत महला नावा, मन कहां बिसार्यो राम नाम, तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाओ, एहो जग तुए का पहार, तै साचा मानिया के विचार, तन दारा संपत गृह, कह संग ना चालै समझ लेहे, एक भगत नारायण होए संग, कहो नानक भजते एक रंग, बसंत महला नावा, कहां पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ, सम सुपने कहो जग जान, बिन सैशन मैं साची मान, संग तेरे हर बस्त नीत, निस्बासर पाइता है मीत, बार अंत की होए सहाय, कहो नानक गुणता के गाए, बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम बिसार ग्रह देख पीत, मनुआ डोले चीता नीत, जग स्यों टूटी झूठ प्रीत, काम क्रोध बिख बज्र भार, नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ, कर बालू का कुमन केर, बरखस बाणी बुध बुदा हेर, मात्र बूंद ते तार चक फेर, सर्ब जोत नामै की चेर, सर्ब उपाय गुरु सिर मोर, भगत करो पगला गौ तोर, नाम रता चाहो तुझे और, नाम दुराए चले सो चोर,
ਪਤ ਖੋਈ ਬਖਿਅੰਚਲ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਤੋ ਪਾਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਭ ਰਜਾਏ। ਪੈ ਮਾਨੈ ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਕਾਮਨ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰ ਭੋਗ, ਪਾਨ ਫੂਲ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਰੋਗ, ਖੀਲੈ ਬਿਕਸੈ ਤੇ ਤੋ ਸੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤ ਕੀਨਸ ਹੋਗ। ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਧਿਕ ਸਿੰਗਾਰ, ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪ ਬੇਕਾਰ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਨਾ ਘਰ ਬਾਰ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਪ੍ਰਿਓ ਸੇਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆਸ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰ, ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਲਿਆ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹੇ, ਨਾਨਕ ਠਾਂਡੇ ਚਾਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਪਰਮਸ ਆਏ ਜਾਏ, ਅਤ ਲੁਬਧ ਲੁਬਾਨੋ ਬਿਖੁਮਾਏ, ਨਏ ਅਸਰ ਦੀ ਸਹਿਕ ਪਾਏ, ਜੋ ਮੀਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਕੰਠ ਪਾਏ, ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਸਮਝ ਸੋ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਏ। ਰਹਾਓ ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਪਰਮਸ ਭਵਰ ਤਾਰ, ਬਿਲ ਬਿਰਥੇ ਚਾਹੈ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ, ਮੈਂਗਲ ਜਿਉ ਫਾਸਸ ਕਾਮਹਾਰ, ਕੜਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਓ ਸੀਸ ਮਾਰ, ਮਨ ਮੁਗਧੋ ਦਾਦਰ ਭਗਤਹੀਨ, ਦਰ ਪ੍ਰਹਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਲੀਨ, ਸਭ ਦੁਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣਹਿ ਬੀਨ, ਮਨ ਚਲੈ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕ ਰਾਖ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਰਾਤੇ ਪਤ ਨਾ ਸਾਖ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪ ਰਾਖ, ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ।

तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम सुआद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। बसंत हंडोल महला पहला, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार, कर महल चार बहाली, चारे दीवे चौ हथ दीए एका एका वारी, मेहरवान मधसूदन माधव, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ, घर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी, धरती देग मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी, ना सा बूर होवै फिर मंगै, नारद करे खुआरी, लाभां देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी, पूंजी मार पवै नित मुदगर, पाप करे कोटवारी, पावै चंगा पावै मंदा, जैसी नजर तुम्हारी, आद पुरख को अल्लाह कही है, सेखा आई वारी, देवल देवत्या कर लागा, ऐसी कीर्त चाली, कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी, घर घर मियां सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी, जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिफत तुम्हारी, तीर्थ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिलै दिहाड़ी, नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली, बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अन क्यो पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाई है, भज राम नाम निशान रहाओ, एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदग चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल पय है, जो कृष्ण बिद्र कर आया, मिलियो सुदामा पावनी तार, सब किश आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आ परखाई, जे सब सागत करे बखीली, एक रती तिल ना कटाई, जन की उसत है राम नामा, दे दे सोभा पाई, निंदक साकत खब ना सकै तिलो, अपने कर लू की लाई, जन को जन मेर सोभा पावै, गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवै दासन दासा, आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावै, नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जलै समावै, बसंत महला पंजवां, कर पहला दो तुगिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कहे एक बार, बाल्मीकि होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संतां जाचौ चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ, गुण का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, बिपर सदामे दालद पंज, रे मन तू

जब भूखा हो तब भोजन मांगे, अघाए सुख सघारे तब अरोग, जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे। कवन बसेरो दास दासन को, थापो थापन हारे, नाम न बिसरता जीवन पाई है, बिनती नानके सारे। सारंग महला पंजवा। मन ते भय पाओ दूर परायो, लाल दयाल गुलाल लाडले, सह सहज गुण गायो रहाओ। गुरबचनात कमात कृपा ते, बहुर नकत हूं तायो, रहते उपाद समाज सुख आसन, भगत वच्छल ग्रह पायो। नाद बिनोद कोड आनंदा, सहजे सहज समायो, करना आप करावने आपे, कहो नानके आप पायो। सारंग महला पंजवा। अमृत नाम मनै आधारो, जिन दिया तस्कै कुरबानै, गुरपूरे नमस्कारो रहाओ। बूझी तृष्णा सह सुहेला, काम क्रोध बिखजारो, आए ना जाए बस ए ठाकर, जह आसन निरंकारो। एक है प्रगट एक है गुप्ता, एक है तुंदुकारो, आद मद अंत प्रभ सोई, कहो नानक साच विचारो। सारंग महला पंजवा। बिन प्रभ रहन ना जाए करी, सर्व सुख ताहू कै पूर्ण, जा कै सुख है हरी रहाओ। मंगल रूप प्राण जीवन तन, सिमरत आनंद घना, वड़ समर्थ सदा सद संगे, गुण रसना कवन पना। थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारे, कहो नानक ते भवन पवित्रा, जा मैं संत तुम्हारे। सारंग महला पंजवा। रसना जपती तू ही मात गर्भ, तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू ही रहाओ। तुम है पिता तुम ही फुन माता, तुम है मीत हित प्राता, तुम परिवार तुम है आधारा, तुम है जी प्राण दाता, तुम्हें खजीना तुम्हें जरीना, तुम ही माणक लाला, तुम्हें पार जात गुरते पाए, तो नानक पहे निहाला। सारंग महला पंजवा। जाहू काहू अपनो ही चित जावे, जो काहू को चेरो होवतो ठाकर ही पै जावे रहाओ। अपने पह दुख अपने पह सुखा, अपने ही पह बिरथा, अपने पह मान अपने पह ताना, अपने ही पह अर्था। किन ही राज जोबन तन मिलखा, किन ही बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए, पूर्ण आस हमारी। सारंग महला पंजवा। झूठो माया को मदमान, त्रोह मोह दूर कर बपरे, संग पाले जान रहाओ। मिथ्या राजोबन अर उमरे, मीर मलकार खान, मिथ्या कापर सुगंध चतराई, मिथ्या भोजन पान। दीन बंदरो दास दासरो, संतै की सारान, मंगर मंगो होय चिंता, मिल नानक हर प्राण। सारंग महला पंजवा। अपनी इतनी कछु ना सारी, अनक काज अनक तावरता, उर्जो अन जंजारी रहाओ। देव सचार के दिसै संगी, उहां नाही जय पारी, तिन स्यों राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी। हाँ नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नानक के प्रभ, संतन संग उधारी। सारंग महला पंजवा। मोहनी मोहत रह ना होरी, साधक सिद्ध सगल की प्यारी, टुटै ना काहू तोरी रहाओ। खड़ शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ गमन ना थोरी, पूजा चक्र बर्त नेम तपिया, उहां गैल ना शोरी। अंध कू मह पतत होत जग, संतो करो परम गत मोरी, साध संगत नानक भयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी। सारंग महला पंजवा। कहां करै रे खाट खाट ली, पवन अफार तोर चामरो, अत जजरी तेरी रे माटली रहाओ। उही ते हरियो उहां ले तरियो, जैसे बासा मास देत चाटली, देवनहार बिसारियो अंदले, जो सफरी उधर भरै बैहाटली।

जैसा करै कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कही है सूरत, जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया, सतगुर कै पाणे जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श में लाया न फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा। नौमी नेम सच जे करै, काम क्रोध तृष्णा उचरै। दसवीं दसे द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजै। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र नाम विस है, बहु प्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया। जम दर बदे मारिये नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हूणा गावै गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए, काल खाए किश हथों दे, नानक राहो।

काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भर अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवा, सूरदास एको अंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक, रहाओ दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिनो कौन सहाई, मन का मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का, रहाओ आगे कहो किस तुल्हा, बंद हो क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो, रहाओ तुदनो सेव है, तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावै से अमृत पावै, से ही सुचे हो ही। अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वरे आन मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना, रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार पई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग पई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्मै जन्म गवाया, मन भावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया, रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिरसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवार नहारा, आत्म चीन तहां तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਓ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नाम निध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तो मैं सब सुख पाए। संत सवाए ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन ना जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी, बारक मुख मांगै सो देना। नानक बारक दर्स प्रभ चाहै, मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगल अंदेसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का, ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत सजन मेरे पए सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते। कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै, आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते, काल अग्न में जरते। नानक सरन चर

तिसा श्रेवो प्राणी हो तिस बनिया वरना कोए। गुरमुख हर प्रभु मन वसै तां सदा सदा सुख होए। सहसा मूल न होवई सब चिंता विचों जाए। जो किश होए सो सहजे होए कहना किशु ना जाए। सच्चा सह मन वसै तां मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लैन पन्ने पाए। महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार। गुरमुख जिनी बुझिया हर अमृत रखिया उरतार। हर अमृत पीवै सदा रंग राते हमें तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसै कृपा तार। नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोली है मन तोले पाया ना जाए। गुर कै शब्द विचारी है गुण में रह समाए। अपना आप तोलसी आपे मिले मिलाए। तिसकी कीमत ना पवै कहना किछु ना जाए। हम बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझती बोझाए। जगत मुसे अमृत लुटी है मनमुख बूझ ना पाए। विण नावै नाल ना चलसी जासी जन्म गवाए। गुरमती जागे तिनी कर रखिया दूता का किश ना वसाए। श्लोक महला तीजा बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए। एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्या ते खुतरै चढ़ै चवगण वन। महला तीजा बाबीहा जल मैं तेरा वास है जल ही माए फिराहे। जल की सार न जानई ता तू कुकण पाए। जल थल चहु दिस वरसदा खाली को थाओ नाहे। एते जल वरसद तिख मरै भगत न के नाहे। नानक गुरमुख तिन सो जी पई जिन वसिया मन माहे। पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किन अंत ना पाया। गुरमुख नाम ते आए तुझै समाया। जो क्षति गुबार तिसी पाया जला बिंब असराल। तिने वरताया नील अनिल अगम सुरजीत सबाया। अग्नि उपाई वाद पुख तिहाया दुनिया कै सरकार दूजा पाया। रखे रखण हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा एहो जल सब तै वरसदा वरसै पाए सुभाए। से बिरखा हरियावले जो गुरमुख रहे समाए। नानक नदरी सुख होए इना जनता का दुख जाए। महला तीजा पिनी रैन चमकिया उठा शबर लाए। जित उठा अंतर बहुत उपजै जां सहो करे रजाए। जित खादे मन तृप्ति है जिया जुगत समाए। एहो तन करते का खेल है कदे आवै कदे जाए। ज्ञानिया का तन नाम है सद ही रह समाए। नानक जिन कौ नजर करे ताए हो तन पल्लै पाए। पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसों करी पुकार। आपे लेखा मंगसी आप कराए कार। जो तिस पावै सोथी है हुक्म करेगा वार। आप छडाए छुट्टी है आपे बख्शन हार। आपे वेखै सुने आप सब सहद आधार। सब मैं एक वर्तदा सिर सिर करे विचार। गुरमुख आप विचारी है लगे सच प्यार। नानक किसनो आखी है आपे देवनहार। श्लोक महला तीजा बाबीहा एहो जगत है मत को परम पुलाए। एहो बाबीहा पशु है इसनो बुझण नाहे। अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए। नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुण ना लागी आए। महला तीजा मलार शीतल राग है हर त्याया सांत होए। हर जीव अपनी कृपा करे ता वरतै सब लोए। वुठे जिया जुगत होए तरणी नो सिंगार होए। नानक एहो जगत सब जल है जल ही ते सब कोए। गुर प्रसादी को विरला बूझै सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी
ਸੱਚਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਕਿਸ ਗਣੀ ਮਾਨਸ ਕੂੜਾ ਗਰਬ ਸੱਚੀ ਤੁਧ ਮਣੀ ਆਵਾ ਗੁਣ ਰਚਾਏ ਉਹ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਤਿਸ ਗਣੀ ਜੇ ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੀ ਗਣਤ ਗਣੀ ਮਨਮੁਖ ਮੋਹੇ ਗੁਬਾਰ ਜਿਉ ਪੁੱਲਾ ਮੰਝ ਮਣੀ ਕੱਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਾਬੀਹਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਅਰਦਾਸ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪਹਾਣੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲਿਆ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਬਾਬੀਹਾ ਕਿਆ ਬੱਪੜਾ ਜਗਤੈ ਕੀ ਤਖ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਾਬੀਹਾ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸੁਭਾਏ ਇਹੋ ਜਲ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਹੈ ਜਲ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜਲ ਪਾਈਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਿਨ ਚਸਾ ਨਾ ਜੀਵਦੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ ਪੌੜੀ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਅਸੰਖ ਮੈਂ ਗਣਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਧ ਸਿਰਜੀ ਤੁਧੈ ਗੋਈ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਸ ਦਾਵੈ ਸੰਚ ਧਨ ਦੂਜੇ ਪਤ ਖੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਸੋਈ ਵਿਣਨਾਵੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆ ਪੀਹਾਵਲ ਹੋਈ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਾਬੀਹਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਓ ਗੁਣਵੰਤੀ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੋ ਵਈ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੈ ਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਾਬੀਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੋ ਜੀ ਦਾਨ ਜਲ ਬਿਨ ਪਿਆਸ ਨਾ ਉਤਰੈ ਛੁਟਕ ਜਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਜਗਤੋਂ ਪਾਏ ਕੈ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਗੁਣ ਛੋੜ ਔਗੁਣ ਕਮਾਵਦੇ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਜੂਐ ਜਨਮ ਤਿੰਨੀ ਹਾਰਿਆ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਹਿਨਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਖੀ ਉਰਤਾਰਿਆ ਸੱਚਾ

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावै गुरमत, हौं बलबले हौं बलबले, जन नानक हर जप पई, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जापो जगदीश, तुमरे जन राम जप है ते उत्तम, तिन कहो हौ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बढ़ हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सतगुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पहे कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार बर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरह कुर सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर

नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेता है, सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेता है, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमत है, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत पए तेह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गह रहे अटकाए, अनक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संत नहीं सरनाए, काटे अज्ञान परम हो माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बिनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवनो, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इशनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल बिखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाला मोला, भयो प्राप्त गुर चरना रह, कहो नानक प्रभय कृपाला, मगन पय ही अरै दरसार है, कानड़ा महला पंजवा, साजन मी स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कह संगे, थोरै काज बरो कह फेरो रहाओ, नाम बिना जेतो लपटायो, कछु नहीं नाही कछ तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोहयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दा तार बसेरो, कहो नानक एक है पारो सौ, बंधन काटन हार गुरमेरो, कानड़ा महला पंजवा, बिखे दल संतन तुमरे गायो, तुमरी टेक भरोसा ठाकरो, शरण तुम्हारी आयो रहाओ, जन्म जन्म के महाप्राहित, दर्शन पेट मिटाहयो, पयो प्रगास अनदुजियारा, सह समा समाहयो, कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समर्थ अथाहयो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहयो, कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप धीरे, बिन सह मोह परम दुख पीरे रहाओ, सिमरो दिन रैन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेड़त नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन सुख पाई है, साज जना मिल हर जस गाई है, रहाओ कर कृपा प्रभु दया बसेरो, चरण संदर के माथा

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना। दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन। प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ आओ, तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ। बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख अर नंगा। पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा। दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा। हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा। सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो। हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ। जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हों कैसे कराऊं। हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए। त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो। जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी। सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाकर रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवा, कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्यागी है गुमान मान, पेखता दयाल लाल। हां हां मन चरण रेन रहाओ। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए। चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना। कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान। तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवा, प्रभ कहन मलन दहन लहन। गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ। तटन खटन जटन होमन, नाही डंड धार सुवाओ। जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ। सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवा, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पावन भगत पवछल, पै हरन तारन तरन रहाओ। नैन तिबते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन। प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन। आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवा, चरण सरन दयाल ठाकर आन नाही जाए। पतत पावन बिरद स्वामी, उधर ते हर त्याए रहाओ। संसार गार बिकार सागर, पतत मोह मान अंध। बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो। राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप विनाश, मन दर्शने की प्यास। प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक। हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवा, वार वारो अनक डारो। सुख प्रे सुहाग पल करात रहाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इन स्यों तात। मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग।

प्रेप्रीत प्यारो मोरो रहाओ। गृह से सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो पंच दूतन स्यों संग तोरो। आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिगसोरो छुटकी हम मैं सोरो। गायो री गायो प्रभ नानक गुनी गहेरो कनड़ा महला पंजवा करनावा। ता ते जाप मना हर जाप जो संत बेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंताप रहाओ। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उधारो आप। बिनस जाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप। कानड़ा महला पंजवा कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो दान देहो जी संतो जात जियो बलिहार। मान मोही पंच दोखी उर्ज निकट बसेओ ताकी शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रमेओ हार परयो द्वार कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार। दुलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सहे सुभाए अपने आए कशु ना जानो कशु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथू ना जाए करै बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोलै। चरण लुभाए अंत जाए थान थनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोलै। कानड़ा महला पंजवा गोबिंद ठाकर मिलन दुराई परमित रूपा गामा गोचर रहो सर्व समाई रहाओ। कहन पवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई। जतन जतन अनक्यो पावरे तव मिलियो जौ कृपाई। प्रभु दयार कृपाल कृपा निद जन नानक संत रे नाई। कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम।

प्राण मन तन सर्वसो हर गुण दे सुख मोर ईत ऊत राम पूर्ण निरखत रिद खोर संत सरण तरन नानक बिरस्यो दुख कोर कनडा महला पंजवा। जन को प्रभ संगे असने हो साजनो तू मीत मेरा गृह तेरे सब के हो रहा हो। मान मांगो तान मांगो तन लक्ष्मी सुत देह मुकत जुगत भुगत पूर्ण परमानंद परम निधान। पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च अहंचरी करत करत चर्च चर्च चरचरी योग ध्यान पेख ज्ञान फिरत फिरत तरत तरत तरचरी रहाओ। अहं अहं अह अवर मूड मूड मूड बवरई जत जात जात जात सदा सदा सदा काल है। मान मान मान त्याग मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे भाज कहत नानक सुनोरे मूड बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदियां महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मन राम नाम सुख पावै गो ज्यों ज्यों जपै त्वै सुख पावै सतगुर सेव समावै गो रहाओ। भगत जना की खिन खिन लोचा नाम जपत सुख पावै गो अनरस साध गए सब नीकर बिन नामै किछ ना सुखावै गो। गुरमत हर हर मीठा लागा गुर मीठे बजन कढ़ावै गो सतगुर बाणी पुरख पुरखोत्तम बाणी सो चित लावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज करे।

रस को घट को नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै, मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस।

हम निर्गुणी मनूर या तफीके मिल सतगुर पारस की गै रहाओ। सुरग मुकत बैकुंठ सब वंश है नित आसा आस करी जाए। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन तीजे। माया मोह सबल है भारी मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजे। चंदन वास भयंगम वेड़ी के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा बिक्षेद शेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने मेरे साधु लुकी दी जय। साधु साधु साध जानी के जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन जन हर भगवान दखी जय। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया क्यों कर तंत नी जय। तंत सूत किशनिक सह नाही साक्त संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी हम क्यों कर मिले मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा रामा राम राम राम रविजय। साधु साधु साध जानी के मिल साधु हर रंग की जय। रहाओ जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम होवो सब शिष्ट चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिन सिरन की है हर सगल पवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मनसा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूडो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

नाम रते तीर्थ से निर्मल दुख हम मैं मैल चुकाया, नानक तिनके चरण पखल जिन्ना गुरमुख साचा पाया। प्रभाती महला तीजा विवास एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाल, हर मंदिर सब देखो जी है हर नामो लिहो समाल, मन मेरे शब्द रपै रंग होए सच्ची भगत सच्चा हर मंदिर प्रगटी साची सोए रहाओ। हर मंदिर एहो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल ना जाननी मानस हर मंदिर ना होए। हर मंदिर हर जियो साजिया रखिया हुक्म सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेटन हार। शब्द चीन सुख पाया सच्चा नाय प्यार, हर मंदिर सब दे सोहना कंचन कोटिया पार। हर मंदिर एहो जगत है गुरबिन कोरिया अंधार। दूजा

प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की बिरथा मन ही जानै, कह बूझ लिया गै कहिया, अंतर जामी राम रवाई, मैं डर कैसे चहिया। बेदियले गोपाल गोसाई, मेरा प्रभ रवया सरबे ठाई रहाओ। मन है हाट मन है पाट, मन है पासारी, मन है बस है नाना पेदी, परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता, दुबदा सह समाणी, सबो हुक्म हुक्म है आपे, निरपौ समत विचारी। जो जन जान भजै पुरखोत्म, ताची अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया, हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग, ता का अंत न जानिया, सर्ब निरंतर राम रया रव, ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै, आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बानै बिखे, बास्ते सुख लागला, सर्बे आद परमलाद, काहट चंदन पैलै। तुमचे पारस हमचे लोहा, संगे कंचन पैला, तू दयाल रतन लाल, नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलत उपाया, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया, जी की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभे, ओ आप ही करता बीठल दे। जी का बंधन कर्म व्यापै, जो किश किया सो आपै आपै, प्रणवत नाम देओ इहो जियो, चितवै सो लहै, अमर होए सद आकुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती, हृदय अंतर कर तलकाती, ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद च राम, क्रूर दिष्ट रता निस्बादं रहाओ। नित प्रत इशनान श्रीरंग, दोय धोती कर्म मुख खीरंग, हृदय श्री संध्यानी, पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजसो चक्र गणेशं, निस जागत निस जागस भगत परवेशं, पग नाचस चित अकर्मं, एलम पट नाच धर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला, हृदय कूड कंठ रुद्राखं, रे लंपट कृष्ण अपाखं, जिन आत्म तत् न चीनिया, सब फोकट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै, बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नावा, राम सिमरो एह तेरे काज है, माया को संग त्याग, प्रभ जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान, काहे पर करतमान, बारू की पीत जैसे, बसदा को राज है। नानक जन कहत बात, बिन सजह है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है, कहो कहां बार बार, समझत न क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार, उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार देहे, गोविंद को नाम लेहे, अंत बार संग तेरा, यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यों बिसार, प्रभ को जस ही ये तार, नानक जन कह पुकार, अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा, रे मन कौन गत होए है तेरी, एह
जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिख्यन सिंह अत लुभान मत नान फेरी रहाओ। मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगहो परी बेरी। नानक जन कह पुकार सुपने ज्यों जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी। जय जयवंती महला नावा बीत जय है बीत जय है जन्म अकाज रे निस्दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान काल तौ पहुंचो आन कहां जह पाजरे रहाओ। अस्थिर जो मान्यो

शीतरुतेण नानक शीतलंग सास्वजन है मंत्रंग राम राम नामं ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानंग सम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वैरण है दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अल्प माया जल कमल रहित है उपदेशंग सम्मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेण कै खट लखन पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध सवजन है अजा पोगंत कंद मूलंग बसंते समीप केहर तत्रगते संसार नानक सोग हरखंग व्यापते छलंग शद्रंग कोट बेगनंग अपराधं किल बखमलंग परम मोहंग मान अपमानं मदंग माया व्यापतं मृत्यु जन्म प्रमंत नरक अनक उपावंग न सिद्ध्यते निर्मलंग साध संग है जपंत नानक गोपाल नामंग अरमंत गुण गोविंद नित प्रत तरन तरन शरण स्वामी रमणशील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रपूर्ण है निराश आस करणं सगल अर्थ याले है गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्वसूखण है दुर्वचन भेद परमं साकत फसनंत सुरजन है अस्थतं सोग हरखं पै खीणंत निर्भव पै अटवियं महानगर वासं धर्म लखन प्रमया साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं हे अजित सूर संग्रामं अत बल नाबो मर्दन है गण गंधर्व देव मानुख्यं पशपंखी बेमोहन है हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी प्रमावण है चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तपसील विदारण है अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावण है तव भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण हे कल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवं वस्यं क्रोत निरत्यं क्रोत जथा मरकटै अनक शासन ताड़ंत जम दूतै तव संगे अदमं नरै दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोरै अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया अकरण क्रोत अखाद खाद्यंग असाजिंग साज समझिया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है हे जन्म मरण मूलंग हे जन्म मरण मूलंग अहंकारं पापात्मा मित्रंग तजंत सत्रंग दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण परम प्यान उद्यान रमणंग महाविकट असाध रोगण वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरो हे संसार ताप हरण करना मैं सब दुख हरो हे शरण योग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समाये समरंत नानक राम दामोदर माधव चरण कमल सरणं रमणं गोपाल कीर्तन साध संगेन तरणं नानक महासागर पैद उत्तर सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्त काया रख्या परमेश्वर आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर सर्व रख्या गुरदयाल पै दुख विनाशन भगत वचला नाथ नाथे शरण नान पुरखा चुत जैन कला तारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर तारणं जैन कला मात गर्भ प्रतिपालं नैच जंत जठर रोगण
तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नहश जंत तरंग तोयण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णवै ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना स्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वट भागी उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाद पंच तस्कर हीत मोह पै परम परमणं अहु फांस दीखण कठन पावक तो असाध कोरंग अगम तीर न लंगन पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरण कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगल रोग खंडन साध संगेण गुण रमत नानक सरण पूर्ण परमेश्वर श्यामलंग मदर मानुखयंग हृदयंग भू वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग समंत स्वजन अचेत मूडा ना जानंत कटंत सासा नित प्रत्यक्ष जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते हरिचंत पुरख है कुटंब लीला अनित आसा विख्या विनोद परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नान करनामय हे जहबे हे रसगे मदर प्रिया त्वयं सत हतंग परम बादंग अवर्त एथ सुध अक्षरण गोविंद मोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतंग बलवंत बलात्कारण चरण कमल नह पजंत तरण समान त्रिग जन्मन हे पपील का ग्रष्टे गोविंद सिमरन तोयंग धने नानक अनक बार नमो नम त्रिणंगता मेरंग सहकंता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊनंगता परियंग अंधकार कोट सूर ओजारंग बिनवंत नानक हर गुर दयारंग ब्रह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतंग संसार गहंग ते नर नानक ने फल पर दर्भ हिरणंग बहु विघ्न करणंग उचरणंग सर्वजी कै लौ लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म करत सासु करै मते समेव चरणं उदरणं पै दुतर अनेक पात कहरणं नानक साध संगम ना संशय महला पंजवां गाथा एको अंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख देहं मलीणं मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानन परमाणो पर जंत आकाश दीप लो से खंडन गशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरनो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव लब्ध्यंग साध संगेण नानक सोख्य स्थानं गोपाल भजनं लब्ध्यंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुंफ गोपाल कथं मथं मान मर्दन हतं पंच सतरेण नानक हर बाणे परहारण
बचन साध सुख पंथा लहंथा बड़ कर्मण अरहंता जन मरणेन रमणंग नानक हर कीर्तन। पत्तर पुर जेन चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता नाम बेहूण बिखमता नानक बहंत जोन बसरो रैणी। पावनी साध संगेन लबंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर ने व्यापण। गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोबिंद रमणंग साध संग में। सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यान नानक कोल समूह उदाहरण। सुंदर मंदर सैन जेण मद हर कीर्तन मुक्ते रमन गोविंद नानक लभद्यंग बड़ भागण। हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अबज संग मिटंत सत पुत्र है सिमरताबर दै गुरमंत्रण। प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण। मरणंग बिसरणंग गोविंद जीवणंग हर नाम त्यावण लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण। दसन बिहून पुयंगं मंत्रंग गारड़ी निवारंग व्याध्योपण संतंग नानक लब्ध कर्मण। जाथ कथ रमणंग शरणंग सर्वत्र जियण तथ लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुरदर्शन। चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यंग परा पूर्वण। शुभ बचन रमणंग गवणंग साध संगेण उदरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते। वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग कुले समूह सगले उदारंग वडपागी नानक को तारंग। सिमरणंग गोबिंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग साध संगेण नानक वडपागी पेटंत दर्शन। सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं। सुखैन बैन रत्नं रचनं कसुंबरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुखना सुपन। फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सब है के साजया सोलह किए सिंगार के अंजन पाजया। जे करे आवे कंत ता सब किश पाई है हर हा कंत बाज सिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसया कंत सावड पागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे। हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया। आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया।
कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुतरे हो संसार सतगुरु तराया मिटाया आवा गौण जा पूरा पाया हर हाय अमृत हर का नाम सतगुर दे पाया मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बसना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नासना बसो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसै जे सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेस पियो कत पाई हर हां जे मस्तक होवे भाग तां दर्श समाई है डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदो पुरख बिधाता तां तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जे संग लागे प्राण तिसै को वाही है बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे मित का चेता अनूप मराम ना जानी है गाहक गुनिया पार सो तत पिछानी है चित चित समाए ता होवे रंग घना हर हां चंचल चोरे मार ता पावे सच तना सुपने उबी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख बराइत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कत पाई है हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है नैन ना देखे साध से नैन बिहालिया करन ना सुन ही नाद करन मुंद कालिया रसना जपे नाना तिल तिल कर कटी है हर हां जब बिसरै गोबिंद राए दिनों दिन कटी है पंकज फाथे पंक महामद गुम्फिया अंग संग उरझाए बिसरते सुम्फिया है कू ऐसा मीत जे तोरै बिखम गांठ नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ तावो दसा अनेक प्रेम प्रभ कारणे पंच सतावै दूत कमन बिद मारणे तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है हर हां महा बिखादी कहात पूर्ण गुर पाई है सतगुर कीनी दात मूल नान खुट्टई खावो पुंचो सब गुरमुख छुट्टई अमृत नाम निदान दिता तो सहार नानक सदा आराध कदे ना जाहे मर जिथे जाए भगत सो थान सुहावना सगले होए सुख हर नाम ते आवना जी करण जयकार निंदक मोए पच साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पदत पुनीत कतै नहीं सेवी है झूठा रंग खुआर कहां लग खेवी है हर चंदौरी पेख काहे सुख मान्या हर हां हां बलिहारी तिन जे दर गए जान्या कीने कर्म अनेक गवार बेकार कहन महा दुर्गंध तवास सठ का शार तन फिर तो गर्भ गुबार मरण जानई हर हां हर चंदौरी पेख काहे सच मानई जिसकी पूजै औध तिसै कौन राखई वैदक अनप्यो पाव कहां लो पाखई एको चेत गवार काज तेरे आवई हर हां बिन्ना मैं तनशार बिरथा सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई
मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई, जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे, हर हां हाउ बलिहारी तिन जे हर रंग रावणे। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औख दे आए रास विच आप खलोया, जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरिया।

बाद समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जाप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चित्व मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनौ चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यो खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यो सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगा दी सगल भगत ता को सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सब को हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखो तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछ पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकीनो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न मन कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठताव ते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी स्यो दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरयो कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਯਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ।

करते हुए सो होए। कबीर बैसनों की कुकर भली, सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस, ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला, एहो हरियारा।

बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तौ मिलै दोनों वर्ण गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरै चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हुके ना है, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहन क्यों करो सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं घट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अरचिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

फरीदा दिल दत्ता इस दुनी स्यों दुनी ना कितै काम मिसल फकीरां गाखड़ी सो पाईए पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहेब संधिया क्या चले तिस नाल इक जागन दे ना लहन इक ना सुत्या दे उठाल ढूंढें दिए सुहाग को तौ तनकाई कोर जिन्ना नाम सुहागनी तिन्ना चाक ना होर सबर मंज कमान ए सबर का निहुणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन ए वै जालेन हुन जी खुदाई दै भेत न किसै देन सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करै वद थी वै दरियाओ टुटना थी वै वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किने चाली है दरवेसा वी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मूह प्री मिलन ताना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हाउ ढूंढें दी सजना सजन मैंड नाल नानक अलख ना लखिए गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ मैं जानिया वडहंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना पेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरे जित पावे नानका का गो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास एहो तन लहरी गट थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वे सो हौ करी जित वस आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वे सकार ता वसिया वीकंत मत होंदी होए इयाणा तान होंदे होए निताणा अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिका ना गालाए सब नाम है सच्चा तनी हयाव ना कही ठाहे मानक सब अमोलवे सबना मन मानक ठाहन मूल मचांगवा जे तो प्रिया दी।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुखबाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अबनासी अबगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आना ही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार परै ही ते परै अपरे अपार पर आपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक है निमख तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर मैं आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कौन उपमा देओ बड़े ते बड़ानं जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अबनासी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत इक तिल नहीं पासी जा कहो होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुर नानक जन परसयो से जन मरण दो थे रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसरे अन्न अवर।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कहु दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यतन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕ ਸਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਨ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸੁਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगनत, तिनका मोह भया मन मद का। 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाइय परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोए न जाने। शिव ब्रंच तर ध्यान, नित जिस बेद बखाने। निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समरथ, तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख, गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पव सागर पार उतारन को। संतत ही सत संगत संग, सो रंग रते जस गावत हैं। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तारना तावत हैं। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत हैं। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत हैं। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब दर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कहो, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत, सगल जुग कबहो को पावै आत्म प्रगास को। बेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको, शिव मन गहे नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे। देख दर्श पटक परम पजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। बिद मान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ।
दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहा परवा कहूं कि जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही ओ पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अब नासिया चाला योनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे, करण कारण समर्थ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तै हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्स परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मन तुमली अगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सिरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख सरनाई। मोह मल बिवस की आओ काम गह केस पछाड़े आओ, क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़े आओ। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै, पव सागर बंदे आओ सिख तारे सो प्रसन्न। सिर आत पात सचो तखत योग भोग संजुत बल, गुर रामदास सच सल पान तू अटल राज या पग दल। तू सतगुर चहु जुगी आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर। आदि

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हरनाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चकड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर सिओ आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नारक दुनिया कैसी होई।

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जानो।

काट काट में हरजू बस संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने देवतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौं मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेह बा गुण गोबिंद पजहो, करण सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरै, और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा, उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। जौ सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। माया कारण ता वही, मूर्ख लोग या जान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो, बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहे जम फंद। सुख में बहु संगी पै, दुख में संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो, मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना, निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो, राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन,
तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो, परयो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों, शाड़त नाहन।

झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा, स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत, कह नानक।

जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाए नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक ए बिपत मैं टेक एक रघुनाथ नाम रहयो।

राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए, जेह से मरत संकट मिटे दर्स तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन

अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन, प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही, प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे, ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौसकिया लाप, संग रागनी पांचौ थाप, गोंड करी अरदेव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी, तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशक ओ भारा, खौ खटियौ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए, पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत, उठह तान कलोल गायन तार मिला वही, ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए, सरस बान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी,

गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी कर नाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुन गुनी ऊचै सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नाम दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे है गुरु का जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसे सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसे सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासे, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to SeekNet Radio.

निरंकार। असंख जप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

गावहे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ न रखी सरे जोग

सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जोग जोग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन

जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी।

तेरी अनक तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी। करके

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोई। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

मेल त्रिगुण बंदी देहुरी जो आया जग सो खेल विजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल मन बैरागी घर वसै

दया नाम निदान, अंतर हर रस रव रहया, चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया, लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रव रहया, पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हों तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार, से सुखिये चौं जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार। गुर मिलिया नाम पाईए चूकै मोह प्यास, हर से ती मन रब रहया।

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

जय भाए शब्द रतियां सोहागणी तिन विचहो आहो मैं जाए तिन विचहो हो मैं जाए सदा पिर राव है अपना तिन्ना सुखे सुख विहाय ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिर मन पाया जाए अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे भुख ना जाए आवहु मिलहु सहेली हो मैं पिर दे हो मिलाए पूरा भाग सतगुरु मिले पिर पाया सच समाए

तिन सतगुर चरण गहे सफल मूर्त सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप न लग गई जिस हर का नाम आधार बहां पकड़ गुर कांडिया सोई उतरिया पार ठान सुहावा पवित्र है।

पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख बसया मन आए अंतर जोत परगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए मेरे मन गुर शब्दी सुख होए

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रब शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया बिछड़े सब मह

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरध ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाह प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिय दिन विसरहो नहीं रात।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप, मन इच्छे फल पुंच तू।

नजर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन्ही कीत रतन।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा।

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

ले रहा सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए, गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए, कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ, से मथे ले चल रहे जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ, सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत न लागे डंड, गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड, श्री राग महला पंजवां।

पंजवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसहत आवहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याय गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पां साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौ तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाम सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

करणी सार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसर या पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा। दो कृत सो कृत मंधे संसार सगलाना दोहूं ते

तू वड पुरख सुजाना रहाओ मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही कहन कहावन इहो कीरत करला कथन कहन

हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रब रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

रहाउ। गुर समरथ अपार गुर वड भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जे वड अवर ना कोए। गुर कर

अवतार, गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार, गुर समरथ गुर निरंकार, गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार।

दास सतगुर शरणी आया बाहुड नहीं बिनाश हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत

सच्चा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे ले।

जाए। नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है। कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों तेरे बिन रहन विहाए। अंक जलाओ तन जा लियो मन तन तन बल जाए।

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार अस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुरडाखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए हर

बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आथ बखान। सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोय, हर वर नार सुहावनी मैं पहावे प्रभ सोय। नानक शब्द मिला बड़ा ना वे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला।

हार, हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार। ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए, गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। ऐसा

सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मिटनो सतगुर असुर संहार पग जल बिखमंडरावन।

अभिमान नानक शब्द विचार यै पाई गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है पी विकसै असने जल मह जी उपाय कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया।

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे के हे कर्म मिले सो पाई किरत पया सिर दे

तिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजै हौमै मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आप पछाणिए।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मन मुख भुलै भुलाइए फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोए।

गवाइए शब्द सच्चा सच पाख आकाशी पाताल तुम त्रिभवन रहया समाय आपे भक्ति पाओ तुम आपे मिलह मिलाय नानक नाम न विसरै ज्यों पावै तिवें रजाय श्री राग महला पहला राम नाम मन बेदया अवर के करी विचार शब्द सुर

मन मुख पात गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया, अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत करह।

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौ दिस जाए जेता ऊट है दुख घने नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक है।

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस

भ्रम जाए। नाम पदार्थ पाई गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत बछल हर मन बसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाहिए करम प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा माया मो मेरे प्रभ कीना आपे भरम पुलाए। मनमुख कर्म करहे नहीं बूझ है बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग मह चानन।

शब्द जीव तुमरै गुरमुख भव जल तरण वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न पावै।

क्या निशानिया खसम हो कुथियां फिर है निवाणिया मैले वेस न कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर

तुद विटहों कुर्बान जियो। हर इठै नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

बालक बुद्ध अचेत खीर पियै खेलाइए बेवणजारिया मित्रा। खीर पियै खेलाइए बणजारिया मित्रा। मात पिता सुत हेत, मात पिता सुत

झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुविधा व्यापै दूजा तीजै पहर रैण कै वणजारिया मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जणै वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंधले जां जम पकड़ चलाया।

सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात, कहो नानक भगत सोह है दरबारे, मन मुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा, घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद इयाणी पे अड़ै क्यों कर हर दर्शन पिखै,

फिरै सुहेली हर दरगाह बाल उड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जब हर हर नाम के रखे मुंद आनी पे यड़े गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा हो मैं रोग गया दुख ला था आप आपै गुरमत खादा।

मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु ना चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली।

अधहरे गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोय न दिसै डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते।

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जाए महला तीजा। होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार, नानक विणना मैं को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का, हर की वड्याई।

हैं तिस सब किश मिले इकना दूर है पास तुद बाज हो थाओ को नाही जिस पास हो मंगी है मन वेखो को निरजास सब तुद नु सालाह दे दर गुरमुखा नु परगास सलोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूर्ख गावार दूजे पाए।

पौड़ी। हर की सेवा सफल है गुरमुख पावै थाई, जिस हर पावै तिस गुर मिले, सो हर नाम ते आए गुर शब्द।

कमाए, कूड कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

आदिष्टिया गोचर अलख निरंजन सो देख्या गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा। सतगुर सेवे अपना सो सिर लेख लाए विच हो आप गवाए कह रहन सच लिवलाए। सतगुर जिनी ना सेवे तिन्ना बिरथा जन्म गवाए। नानक जो तिस पावे सो

पूजियै बिन सतगुर बूझ ना पाए। जप तप संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिख

एक स्वान कह कर गावण जननी जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड कर देखत ही।

कनक कलश एक पाया, तिसमह तार चुवै अत निर्मल, रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरुषोत्तम,

जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर

तारंग पानी तन सो देश जहां तू बसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जीओ हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जीओ रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता हुण कद मिलिए प्रया तुद भगवंता मोहे रहन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमहाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ भाग होवा गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर्म है पाया सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जी।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया।

भाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सा गुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए।

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत न आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावहु गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाईऐ होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजहै पैरा गुरमुख हृदय जा कै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपियै तित तरियै गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवां।

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौं जीवां जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो।

संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिन कै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त।

पात्रक तिखहारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारिक तीखीर अगावै ज्यो निर धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किश ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो अपने ठाकुर जो पहराया बहुर न लेखा पुछ बलाया तिस सेवक कै नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो माज महला पंजवां सब किश कर्म है बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बिचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया।

जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे। आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो। अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

भेट संग साध संतन कै सदा जपौ दयाला जियो प्रभ अपना सास सास समारौ ए मत गुर प्रसाद मन धारौ।

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो नाम जपत सर्व सुख पाई सब पौ बिनसै हर हर त्याई।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहा पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

सारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख होवै सो अपना कर राखै पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चै रंग राते सहजे प्रभ सेव है अन दिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावै हर दर सो

समाए सच सलाहे सब कट अंतर सचो सच सुभा बणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन

गुरमुख महल चुकावणिया, गुरमुख महल चुकावणिया, माज महला तीजा। गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा। मन उजल सदा मुख सोह है, अत उजल ना

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमै चूकै पीर गुरमुख मन निर्म

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा गुरमुख करे सो सुभाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिस कौ तू

हो भूख सोहंदा सर्व सुख जिस बख्श परवाहो माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान जन्म

ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट

मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडा।

आए, मारन पाहे हराम महे हुए हलाल ना जाए। नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए, महला पहला।

जिसनो नदर करे तिस देव है, नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी। भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया, करता आप अभुल है ना।

समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कलान कमल विगसया खसम हूं पूरा पाया।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशल

मत मलीन प्रगट भई जप नाम मुरारा शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाइय संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा न

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ, जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

बिन सजाए कूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्ते।

पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाने धन धन गुरु गुर सतगुर कांधा।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो घर वस्त लही मन जागे साकत बद्धक माया तारी तिन जम जोहन लागे।

सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज अना

पर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी मिल

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो मन

इस ग्रह में है कोई जागत रहे, साबत वस ओह अपनी लहै रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती, मुसन

गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा। जिस मन वसै तरै जन सोए, जाकै कर्म प्राप्त होए।

सो सिमरहो अनाथ को नाथ। प्रब चित आए सब दुख जाए, भय सब बिन सहे हर कै नाए। दिन हर पौ काहे का मन है, हर बिसरत काहे सुख जान है। रहाउ जिन तारे बहु तरन।

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे धरयो, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ।

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सबर

पंच संहारे अंतर साच सहज कर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चुकावह निर्भौ कै कर ताड़ी लावह हों हों कर मरना क्या पावह पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावह।

अलख अपेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, ना मोह भूले जम का दुख सहना। मैं तर नाम ज्यो रख हो रहना, चौधरी राजे नहीं किसै मुकाम। शाह मरै संचह माया दाम।

चालहि गुरमुख हुक्म रजाई, रहहि अतीत सच्चे शरणाई। सच कर बैसै काल न जो है, मन मुख कौ आवत जावत दुख मोह रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रहियै, निज कर बैस सहज कर लहियै। हर रस माते इहो सुख कहियै,

आत्म सुख तारा इत उतरा खो दीन दयाला तौ शरणागत नदर निहाला रहा। जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सहना दियारा। जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई। क्या ले आया ले जाए कया पास है जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पाताला।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द

नहीं रोता। आवत को जाता कहे, जाते को आया। पर की को अपनी कहे, अपनों नहीं पाया।

ब्रह्म समाया राग गौड़ी ग्वारे री महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ मन मुख सूतक कब है न जाए।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

गुर कै शब्द पंच संघार है, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोह नत बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किश एक।

कृपा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तहरै।

लो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साद संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

राम समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता।